फूल हल्की हल्की, फूल सी हल्की हल्की, फूल हल्की, फूल हल्की हल्की, फूल हल्की हल्की, फूल सी हल्की हल्की, फूल हल्की।